0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, भोज मानव के रूप में हमें एक दूसरे के संग एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह हमारे लिए आनंद, सहचर्य और एक दूसरे के जीवन में सहभागिता का एक प्रतीक है। किसी भी भोज में शामिल होते हुए हम अपने जीवन को एक दूसरे के संग साझा करते और अपनी समझ तथा प्रेम में बढ़ते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 18वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए ईश्वरीय भोज की चर्चा करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि किसी भोज हेतु निमंत्रण दिए जाने पर हम किन मनोभावों के संग उसमें सहभागी होते हैं। क्या भोज में शामिल होना हमें दूसरों के जीवन में सहभागी करता और इसके द्वारा हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम का एहसास दिलाते हैं। क्या हमारी सहभागिता निमंत्रण देने वाले के लिए खुशी का कारण बनती है।
1: संध्या होने पर शिष्य यीशु के पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे।
0: श्रोताओं, ईश वचन का श्रवण हमारे जीवन की शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्यास बुझाए, जिससे हम अपने जीवन की तृप्ति को दूसरों के संग साझा कर सकें, जो उनके लिए जीवन का कारण बनेगा। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर की ओर से उनके द्वारा तैयार किए गए भोज में सहभागी होने का एक निमंत्रण देता है। ईश्वर हमें अपने भोज में सहभागी होने हेतु खुला निमंत्रण देते हैं। वे हम सबों के लिए स्वादिष्ट भोज तैयार करने की बात कहते हैं, जहां सारी चीजें मुफ्त में हमारे लिए दी जाती हैं। जिनके पास कुछ भी रकम नहीं है, वे भी ईश्वर के इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं, जहां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और उत्तम अंगूरी उपलब्ध है। श्रोताओं, ईश्वर के ये मनोभाव हमारे लिए उनके हृदय की उदारता को व्यक्त करते हैं। वे सबों के लिए सदैव खुले रहते, हम चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उनका द्वार हमारे लिए हर परिस्थिति में खुला रहता है। इतना ही नहीं, वे हमें सर्वोत्तम चीजें देने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। यह हमारे लिए मानव के प्रति ईश्वर के शर्तहीन प्रेमपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वे सदैव हमारे संग संयुक्त रहने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया भोज हमारे लिए ईश्वर की उत्कंठा को घोषित करता है। श्रोताओं, जिस भांति हमने शुरू में कहा कि भोज हमारे मानवीय जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है, हम इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यह हमारे लिए दूसरों के संग अपनी खुशी को साझा करने का एक अवसर बनता है, जहां हम अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को और अधिक गहराई में ले जाते हैं। और यही कारण है हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने संग भोज की मेज पर आने का निमंत्रण देते हैं। भोज की मेज हमारे लिए वह स्थल बनती है जहां हम न केवल शारीरिक रूप में अपने को तृप्त होता पाते हैं, बल्कि यह हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे के संग अपने संबंध को और भी अधिक गहराई तक ले जाने में मदद करता है। यीशु ख्रिस्त का अपने शिष्यों के संग अंतिम व्यारी का भोज हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता की चर्चा करता है, जिसके संबंध में संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर के संग हमारे संबंध की घनिष्ठता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपनी ओर से इस प्रेम की पहल की है। हमने नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है, और इसका प्रमाण हमारे लिए हमारा जीवन है, जो हमें मुफ्त में मिला है। और इस जीवन की सुरक्षा हेतु पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। श्रोताओं, क्योंकि जीवन हमें प्रेम में दिया गया है, यह हमें इसे एक दूसरे के संग बांटने का आह्वान करता है, जहां हम अपने को निस्वार्थ रूप में दूसरों के लिए देने हेतु बुलाए जाते हैं। प्रेम में हमारा स्वयं को देना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारी ओर से ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग बांटना है, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के संग किया है। क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग साझा करते हैं, यह सदैव विभिन्न रूपों में हमारे लिए बना रहता है, चाहे हम जीवन की विषम परिस्थितियों में ही क्यों ना हो। श्रोताओं, आज का सुसमाचार, जिसका श्रवण हमने किया, प्रेम के रहस्य और उसकी प्रकाष्ठा को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के कार्य में हमें पूर्ण रूपेण समझने को मदद करता है। यीशु अपनी शिक्षा सुनने वालों और अपने पीछे आने वालों की सुधि लेते हैं। वे उन्हें न सिर्फ आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करते, बल्कि उनके शारीरिक भोजन की भी चिंता करते हैं, जो हमें भौतिक जीवन में बने रहने और अपने कार्यों को सुचारू रूप में करने को मदद करता है। यीशु का जन समूह के लिए खाने की फिक्र करना उनके हृदय में व्याप्त प्रेम को व्यक्त करता है। हम लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त पहल करते हैं, अतः वे कहते हैं, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। यीशु के इन वचनों में हम लोगों के प्रति उनकी चिंता, करुणा और प्रेम को पाते हैं। अतः वे अपने शिष्यों को उनके खाने की व्यवस्था करने को कहते हैं, जबकि शिष्यगण अपने स्वामी से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे लोगों को विदा करें, जिससे वे अपने खाने की चीजों की व्यवस्था कर सकें। श्रोताओं, किसी के लिए एक नेक सोच एक नेक हृदय में पनपता है, और किसी भी व्यक्ति में नेक और भले विचार उसके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि वह व्यक्ति ईश्वर के प्रेम और करुणा से ओत प्रोत है। यीशु में हम इसी प्रेम को देखते हैं, जहां वे पिता के संग अपने को संयुक्त करते और उसी प्रेम को हमारे लिए बांटते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त के भोज में शामिल होने हेतु उनसे मिलने वाले निमंत्रण को स्वीकार करें, जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न भूखों से तृप्त होकर दूसरों की भूखों को मिटाने हेतु स्वयं से बाहर जा सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में भाग ले रहे युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा है और अपने संदेश में युवाओं को जोर दिया है कि आज बहुत सारे लोगों को उस खुशी एवं फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको मसीह से प्यार करने वाला युवा ही दे सकता है। बहुत सारे दुखी दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर के माध्यम बनने से नहीं डरें। इन्हीं शब्दों के साथ पोप लियो ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में हिस्सा लेने वाले युवाओं को संबोधित किया जो 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पिउरा इलाके के चुलुकाना शहर में हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवा दिवस में भाग लेने वालों का यीशु ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना और एक ऐसी कलीसिया को बढ़ावा देना जो सहभागिता, एकता और प्रेरितिक भावना में एकजुट हो। अपने वीडियो संदेश में पोप ने 4000 से अधिक प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया जिसमें पेरू भर के युवा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघ शामिल हैं। पोप ने कहा, मैं इस पहल का प्रत्युत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलीसिया के जीवन को नया एवं मजबूत बनाता है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय वस्तु पर चिंतन करते हुए जिससे धर्माध्यक्ष सम्मेलन के युवा एवं लोक धर्म विभाग ने चुलुकानास धर्म प्रांत के साथ मिलकर आयोजित किया है, पोप ने युवाओं को यह साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया कि ख्रिस्त से संयुक्त रहना संभव है और कार्यक्रम के आदर्श वाक्य को याद दिलाया, हिम्मत रखो, ख्रिस्त जीवित हैं। पोप लियो ने कहा, हमारे बीच प्रभु की उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास ही वह आंतरिक आग है जो हमें साहसी बनने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं को अपने आराम से बाहर निकलकर विश्वास में भाई बहनों के समुदाय का हिस्सा बनने, दोस्ती के सच्चे रिश्ते बनाने और यह गवाही देने के लिए प्रोत्साहन दिया कि ख्रिस्त में एक साथ रहना संभव है। पोप लियो ने युवाओं को आमंत्रित किया कि वे इन दिनों प्रभु से मिलने वाले वरदानों को पाने के लिए अपना दिल खोलें। उन्होंने कहा, उन बहुत सारे दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर का माध्यम बनने से नहीं डरें जो दुख झेल रहे हैं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे इस सभा के अनुभव को अपने तक सीमित ना रखें। इससे सिर्फ अपने फोन के फोटो या सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में ही ना रहने दें। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने जीवन की गवाही के द्वारा साझा करने का प्रोत्साहन दिया और जोर दिया कि आज बहुत से लोगों को उस खुशी की और फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको ख्रिस्त से प्यार करने वाला एक युवा ही दे सकता है।
1: संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 31 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट के नए मौलिक कानून पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि इसके प्रस्तावना में बताया गया है कि यह प्रशासन की नई जरूरतों और हाल के सालों में लाए गए कई जरूरी विधायी बदलावों को ध्यान में रखने की जरूरत को पूरा करता है। यह कानून तुरंत लागू हो गया और पिछले मौलिक कानून की जगह ले रहा है जो 13 मई 2023 से लागू था। नए कानून में नवंबर 2025 के मोतू प्रोप्रियो द्वारा पहले ही पेश किए गए बदलाव को एक ही कानून टेक्स्ट में शामिल किया गया है जिसके तहत परम धर्म पीठीय समिति की अध्यक्षता अब सिर्फ कार्डिनलों के लिए आरक्षित नहीं है। संत पापा ने वाटिकन सिटी स्टेट के पिछले मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 और परिच्छेद 1 को रद्द कर दिया है जिसमें यह नियम था कि सिर्फ कार्डिनल ही परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं। यह पद अब सिस्टर रफायला पेट्रिनी के पास है जो सचिवालय की अध्यक्ष भी हैं। नए मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 में अब यह कहा गया है कि परम धर्म पीठीय समिति में कार्डिनल और अध्यक्ष सहित दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें संत पापा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। उधर विश्व युवा दिवस सियोल 2027 में 1 साल बाकी है। स्थानीय आयोजन समिति LOC कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तीर्थयात्रियों की सेवा, रहने की जगह, परिवहन, सुरक्षा, मेडिकल देखभाल और संचार सहित सभी विभाग में तैयारी की शुरुआती काम से लेकर पूरी तरह लागू करने तक ले जा रही है। विश्व युवा दिवस हर 2 साल में होता है और लाखों कैथोलिक युवाओं को इकट्ठा करता है और 2027 का सम्मेलन साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 3 से 8 अगस्त तक होगा। एशिया में विश्व युवा दिवस पहली बार 1995 में मनीला में हुआ था। अगले सोमवार 3 अगस्त 2026 को होने वाले एक साल के काउंटडाउन में विश्व युवा दिवस सियोल 2027 यूट्यूब चैनल पर आधिकारिक रचा गया लाक्षणिक गीत रिलीज किया जाएगा। गाने का नाम है कॉन्फिडेंट ईगो विसी मुंडम, अर्थात हिम्मत रखो मैंने दुनिया जीत ली है। यह संत योहान के सुसमाचार का वह श्लोक भी है जिसे इस विश्व युवा दिवस की थीम के तौर पर चुना गया था। इसे कोरियन गीतकार फ्रांसिस जियोन किम ने लिखा है। 3 अगस्त को स्थानीय आयोजन समिति ब्रीथ ऑफ लाइफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन भी लॉन्च करेगा, जो युवाओं को अपने देशों में पेड़ लगाने और ऑनलाइन अपनी भागीदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी से प्रेरित है और 2023 में पुर्तगाल के लिस्बन में हुए पिछले विश्व युवा दिवस के लिए भी ऐसा ही कैंपेन किया गया था। 1 अगस्त 2023 को विश्व युवा दिवस शुरू होने तक लगभग 18,000 पेड़ लगाए गए थे। उधर मास्को की मिसाइलों ने एक बार फिर राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हैं, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। मास्को के हमलों से शहर के 5 जिले प्रभावित हुए हैं। कीव के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, युद्ध के मैदान में अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहने पर रूस आम लोगों के खिलाफ अपने हवाई हमले और आतंक बढ़ा रहा है। उन्होंने एक बार फिर देश में एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की। कल रात का हमला पिछले 48 घंटों में रूस का दूसरा सबसे बड़ा हमला था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, भोज मानव के रूप में हमें एक दूसरे के संग एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह हमारे लिए आनंद, सहचर्य और एक दूसरे के जीवन में सहभागिता का एक प्रतीक है। किसी भी भोज में शामिल होते हुए हम अपने जीवन को एक दूसरे के संग साझा करते और अपनी समझ तथा प्रेम में बढ़ते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 18वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए ईश्वरीय भोज की चर्चा करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि किसी भोज हेतु निमंत्रण दिए जाने पर हम किन मनोभावों के संग उसमें सहभागी होते हैं। क्या भोज में शामिल होना हमें दूसरों के जीवन में सहभागी करता और इसके द्वारा हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम का एहसास दिलाते हैं। क्या हमारी सहभागिता निमंत्रण देने वाले के लिए खुशी का कारण बनती है?
1: संध्या होने पर शिष्य यीशु के पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे।
0: श्रोताओं, ईश वचन का श्रवण हमारे जीवन की शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्यास बुझाए, जिससे हम अपने जीवन की तृप्ति को दूसरों के संग साझा कर सकें, जो उनके लिए जीवन का कारण बनेगा। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर की ओर से उनके द्वारा तैयार किए गए भोज में सहभागी होने का एक निमंत्रण देता है। ईश्वर हमें अपने भोज में सहभागी होने हेतु खुला निमंत्रण देते हैं। वे हम सबों के लिए स्वादिष्ट भोज तैयार करने की बात कहते हैं, जहां सारी चीजें मुफ्त में हमारे लिए दी जाती हैं। जिनके पास कुछ भी रकम नहीं है, वे भी ईश्वर के इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं, जहां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और उत्तम अंगूरी उपलब्ध है। श्रोताओं, ईश्वर के ये मनोभाव हमारे लिए उनके हृदय की उदारता को व्यक्त करते हैं। वे सबों के लिए सदैव खुले रहते, हम चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उनका द्वार हमारे लिए हर परिस्थिति में खुला रहता है। इतना ही नहीं, वे हमें सर्वोत्तम चीजें देने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। यह हमारे लिए मानव के प्रति ईश्वर के शर्तहीन प्रेमपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वे सदैव हमारे संग संयुक्त रहने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया भोज हमारे लिए ईश्वर की उत्कंठा को घोषित करता है। श्रोताओं, जिस भांति हमने शुरू में कहा कि भोज हमारे मानवीय जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है, हम इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यह हमारे लिए दूसरों के संग अपनी खुशी को साझा करने का एक अवसर बनता है, जहां हम अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को और अधिक गहराई में ले जाते हैं। और यही कारण है हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने संग भोज की मेज पर आने का निमंत्रण देते हैं। भोज की मेज हमारे लिए वह स्थल बनती है जहां हम न केवल शारीरिक रूप में अपने को तृप्त होता पाते हैं, बल्कि यह हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे के संग अपने संबंध को और भी अधिक गहराई तक ले जाने में मदद करता है। यीशु ख्रिस्त का अपने शिष्यों के संग अंतिम व्यारी का भोज हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता की चर्चा करता है, जिसके संबंध में संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर के संग हमारे संबंध की घनिष्ठता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपनी ओर से इस प्रेम की पहल की है। हमने नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है, और इसका प्रमाण हमारे लिए हमारा जीवन है, जो हमें मुफ्त में मिला है। और इस जीवन की सुरक्षा हेतु पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। श्रोताओं, क्योंकि जीवन हमें प्रेम में दिया गया है, यह हमें इससे एक दूसरे के संग बांटने का आह्वान करता है, जहां हम अपने को निस्वार्थ रूप में दूसरों के लिए देने हेतु बुलाए जाते हैं। प्रेम में हमारा स्वयं को देना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारी ओर से ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग बांटना है, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के संग किया है। क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग साझा करते हैं, यह सदैव विभिन्न रूपों में हमारे लिए बना रहता है, चाहे हम जीवन की विषम परिस्थितियों में ही क्यों ना हो। श्रोताओं, आज का सुसमाचार, जिसका श्रवण हमने किया, प्रेम के रहस्य और उसकी प्रकाष्ठा को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के कार्य में हमें पूर्ण रूपेण समझने को मदद करता है। यीशु अपनी शिक्षा सुनने वालों और अपने पीछे आने वालों की सुधि लेते हैं। वे उन्हें न सिर्फ आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करते, बल्कि उनके शारीरिक भोजन की भी चिंता करते हैं, जो हमें भौतिक जीवन में बने रहने और अपने कार्यों को सुचारू रूप में करने को मदद करता है। यीशु का जन समूह के लिए खाने की फिक्र करना उनके हृदय में व्याप्त प्रेम को व्यक्त करता है। हम लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त पहल करते हैं, अतः वे कहते हैं, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। यीशु के इन वचनों में हम लोगों के प्रति उनकी चिंता, करुणा और प्रेम को पाते हैं, अतः वे अपने शिष्यों को उनके खाने की व्यवस्था करने को कहते हैं, जबकि शिष्यगण अपने स्वामी से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे लोगों को विदा करें, जिससे वे अपने खाने की चीजों की व्यवस्था कर सकें। श्रोताओं, किसी के लिए एक नेक सोच एक नेक हृदय में पनपता है, और किसी भी व्यक्ति में नेक और भले विचार उसके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि वह व्यक्ति ईश्वर के प्रेम और करुणा से ओत प्रोत है। यीशु में हम इसी प्रेम को देखते हैं, जहां वे पिता के संग अपने को संयुक्त करते और उसी प्रेम को हमारे लिए बांटते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त के भोज में शामिल होने हेतु उनसे मिलने वाले निमंत्रण को स्वीकार करें, जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न भूखों से तृप्त होकर दूसरों की भूखों को मिटाने हेतु स्वयं से बाहर जा सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में भाग ले रहे युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा है और अपने संदेश में युवाओं को जोर दिया है कि आज बहुत सारे लोगों को उस खुशी एवं फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको मसीह से प्यार करने वाला युवा ही दे सकता है। बहुत सारे दुखी दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर के माध्यम बनने से नहीं डरें। इन्हीं शब्दों के साथ पोप लियो ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में हिस्सा लेने वाले युवाओं को संबोधित किया जो 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पिउरा इलाके के चुलुकाना शहर में हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवा दिवस में भाग लेने वालों का यीशु ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना और एक ऐसी कलीसिया को बढ़ावा देना जो सहभागिता, एकता और प्रेरित भावना में एकजुट हो। अपने वीडियो संदेश में पोप ने 4000 से अधिक प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया जिसमें पेरू भर के युवा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघ शामिल हैं। पोप ने कहा, मैं इस पहल का प्रत्युत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलीसिया के जीवन को नया एवं मजबूत बनाता है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय वस्तु पर चिंतन करते हुए जिससे धर्माध्यक्ष सम्मेलन के युवा एवं लोक धर्म विभाग ने चुलुकानास धर्म प्रांत के साथ मिलकर आयोजित किया है, पोप ने युवाओं को यह साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया कि ख्रिस्त से संयुक्त रहना संभव है और कार्यक्रम के आदर्श वाक्य को याद दिलाया, हिम्मत रखो, ख्रिस्त जीवित है। पोप लियो ने कहा, हमारे बीच प्रभु की उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास ही वह आंतरिक आग है जो हमें साहसी बनने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं को अपने आराम से बाहर निकलकर विश्वास में भाई बहनों के समुदाय का हिस्सा बनने, दोस्ती के सच्चे रिश्ते बनाने और यह गवाही देने के लिए प्रोत्साहन दिया कि ख्रिस्त में एक साथ रहना संभव है। पोप लियो ने युवाओं को आमंत्रित किया कि वे इन दिनों प्रभु से मिलने वाले वरदानों को पाने के लिए अपना दिल खोलें। उन्होंने कहा, उन बहुत सारे दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर का माध्यम बनने से नहीं डरें जो दुख झेल रहे हैं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे इस सभा के अनुभव को अपने तक सीमित ना रखें। इससे सिर्फ अपने फोन के फोटो या सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में ही ना रहने दें। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने जीवन की गवाही के द्वारा साझा करने का प्रोत्साहन दिया और जोर दिया कि आज बहुत से लोगों को उस खुशी की और फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको ख्रिस्त से प्यार करने वाला एक युवा ही दे सकता है।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने गुरुवार 31 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट के नए मौलिक कानून पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि इसके प्रस्तावना में बताया गया है कि यह प्रशासन की नई जरूरतों और हाल के सालों में लाए गए कई जरूरी विधायी बदलावों को ध्यान में रखने की जरूरत को पूरा करता है। यह कानून तुरंत लागू हो गया और पिछले मौलिक कानून की जगह ले रहा है जो 13 मई 2023 से लागू था। नए कानून में नवंबर 2025 के मोतू प्रोप्रियो द्वारा पहले ही पेश किए गए बदलाव को एक ही कानून टेक्स्ट में शामिल किया गया है जिसके तहत परम धर्म पीठीय समिति की अध्यक्षता अब सिर्फ कार्डिनलों के लिए आरक्षित नहीं है। संत पापा ने वाटिकन सिटी स्टेट के पिछले मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 और परिच्छेद 1 को रद्द कर दिया है जिसमें यह नियम था कि सिर्फ कार्डिनल ही परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं। यह पद अब सिस्टर रफायला पेट्रिनी के पास है जो सचिवालय की अध्यक्ष भी हैं। नए मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 में अब यह कहा गया है कि परम धर्म पीठीय समिति में कार्डिनल और अध्यक्ष सहित दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें संत पापा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। उधर विश्व युवा दिवस सियोल 2027 में 1 साल बाकी है। स्थानीय आयोजन समिति LOC कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तीर्थयात्रियों की सेवा, रहने की जगह, परिवहन, सुरक्षा, मेडिकल देखभाल और संचार सहित सभी विभाग में तैयारी की शुरुआती काम से लेकर पूरी तरह लागू करने तक ले जा रही है। विश्व युवा दिवस हर 2 साल में होता है और लाखों कैथोलिक युवाओं को इकट्ठा करता है और 2027 का सम्मेलन साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 3 से 8 अगस्त तक होगा। एशिया में विश्व युवा दिवस पहली बार 1995 में मनीला में हुआ था। अगले सोमवार 3 अगस्त 2026 को होने वाले एक साल के काउंटडाउन में विश्व युवा दिवस सियोल 2027 यूट्यूब चैनल पर आधिकारिक रचा गया लाक्षणिक गीत रिलीज किया जाएगा। गाने का नाम है कॉन्फिडेंट ईगो विसी मुंडम, अर्थात हिम्मत रखो मैंने दुनिया जीत ली है। यह संत योहन के सुसमाचार का वह श्लोक भी है जिसे इस विश्व युवा दिवस की थीम के तौर पर चुना गया था। इसे कोरियन गीतकार फ्रांसिस जियोन किम ने लिखा है। 3 अगस्त को स्थानीय आयोजन समिति ब्रीथ ऑफ लाइफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन भी लॉन्च करेगा, जो युवाओं को अपने देशों में पेड़ लगाने और ऑनलाइन अपनी भागीदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी से प्रेरित है और 2023 में पुर्तगाल के लिस्बन में हुए पिछले विश्व युवा दिवस के लिए भी ऐसा ही कैंपेन किया गया था। 1 अगस्त 2023 को विश्व युवा दिवस शुरू होने तक लगभग 18,000 पेड़ लगाए गए थे। उधर मास्को की मिसाइलों ने एक बार फिर राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हैं, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। मास्को के हमलों से शहर के 5 जिले प्रभावित हुए हैं। कीव के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, युद्ध के मैदान में अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहने पर रूस आम लोगों के खिलाफ अपने हवाई हमले और आतंक बढ़ा रहा है। उन्होंने एक बार फिर देश में एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की। कल रात का हमला पिछले 48 घंटों में रूस का दूसरा सबसे बड़ा हमला था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: उसका चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए क्रूस पर ठोके गए मर गए दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे

0: श्री धर्म अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे संगठन को प्रस्तुत कर रहे हैं जो परेशान युवाओं एवं परिवारों का साथ देता है। जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चे का आगमन उनके जीवन में नई उमंग, नई आशा और अनगिनत सपने लेकर आता है। वे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके सुखद जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन माता पिता बनने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। यदि बच्चा संस्कारी, मेहनती और होनहार बनता है तो माता पिता अपने सभी कष्ट एवं संघर्ष भूल जाते हैं। उसकी प्रत्येक उपलब्धि उन्हें गर्व एवं संतोष से भर देता है। किंतु यदि बच्चा बुरी संगति, नशे, अनुशासनहीनता या अन्य गलत आदतों के जाल में फंसने लगे तो वही माता पिता गहरे दुख, चिंता और निराशा से घिर जाते हैं। वे स्वयं को असहाय महसूस करते और अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यीशु के शिष्य धर्म बहनों ने माताओं के लिए एक प्रार्थना दल शुरू किया है ताकि वे अपने बच्चों की मदद कर सकें। यह प्रार्थना दल अब एक ऐसा संगठन बन चुका है जो नशे की लत से जूझ रहे युवाओं की मदद करता है। रियो ग्रांडे का औद्योगिक शहर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है, जहां पूरे अर्जेंटीना से लोग नौकरी के अवसर एवं बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में खींचे चले आते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड, हवा एवं अकेलापन के कारण लोग अक्सर अवसाद, उदासी एवं नशेपन के शिकार होते हैं। ऐसे ही माहौल में येसु के शिष्य धर्म बहनों ने अपना मिशन शुरू किया है। वे पहली बार 2012 में इस द्वीप पर पहुंची। केंद्र में सबसे कमजोर लोगों, खासकर अकेलापन, अवसाद और नशे की लत से परेशान लोगों की मदद की जाती है। मदर विकी याद करते हुए कहती हैं, हमें यह महसूस हुआ कि हमारे आध्यात्मिक मिशन को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा ताकि उन घावों पर मरहम लगाया जा सके। संत मोनिका संगठन की शुरुआत उन माताओं के लिए एक स्वयं सहायता दल के रूप में हुई है जिनके बच्चे नशे की लत में फंसे हुए हैं। माताएं बहुत अधिक दर्द लेकर प्रेरित केंद्र आती थीं और अपनी हालात से उबरने के लिए आध्यात्मिक मदद मांगती थीं। शुरू में उन्हें आध्यात्मिक सहायता दी जाती थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रार्थना को ठोस रूप दिए जाने की आवश्यकता है, जो एक छोटे प्रार्थना दल के रूप में शुरू हुआ और जीवन बदलने वाली नींव बन गई। समय के साथ ऐसे स्वयंसेवी आने लगे जो न सिर्फ माताओं बल्कि उनके बच्चों की भी मदद करना चाहते थे। इससे एक ऐसे तंत्र का रास्ता बना जो पूरी तरह से मदद देता है। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इस इलाके में अकेली ऐसी सेवा है जो पूरे परिवार को मुफ्त धार्मिक एवं चिकित्सा संबंधी मदद देती है। धर्म बहनें बतलाती हैं कि यह कोई आसान सफर नहीं था। उन्हें युवाओं की मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए पढ़ाई

शोध और नए तरीके खोजने पड़े। मदर विकी कहती हैं, हमने अपने काम को बाइबल, यूकरिस्ट एवं मरियम की आध्यात्मिकता के साथ मिलाना सीखा और इससे संत मोनिका केंद्र में फर्क पड़ा। मूल विचार यह था कि संगठन का नाम भले समारिताने रखा जाए ताकि उन लोगों की परवाह की जा सके जो रास्ते में घायल हुए हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि परियोजना को देखते हुए धम्म बहनों ने उन बहादुर माताओं को याद किया जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी और संगठन का नाम संत मोनिका के नाम पर रखने का फैसला किया, जो दृढ़ता एवं विश्वास की मिसाल हैं और जिन्होंने अपने बेटे संत अगस्टीन के मन परिवर्तन के लिए सालों तक प्रार्थना की। यह नाम युवाओं के लिए समर्थन के साथ साथ पुनर्वास और उम्मीद में माताओं की बुनियादी भूमिका को भी दिखाता है। संत मोनिका संगठन के सफर में कई कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से एक मरीसेल की कहानी है, एक युवा महिला जिसका जीवन चुनौतियों से भरा था। मरीसेल के जन्म के बाद उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वह कई केंद्रों में पली बढ़ी। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला था जिसके कारण उसे नशीली दवाओं का सहारा लेना पड़ा। अपनी लत से उबरने के लिए उसने कई तरह के उपचार कराए, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब सरकार ने उसके बच्चों को अपनी निगरानी में ले ली। उन्हें वापस पाने का एकमात्र तरीका था सफलतापूर्वक इलाज कराना, जो उसे नामुमकिन लग रहा था। उसने संत मोनिका पहुंचने के दिन ही अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन किसी आकस्मिक चीज ने उसे रोक दी। वह मदर विकी के मैक्सिकन उच्चारण से आकर्षित हो गए। उस मामूली सी बात ने उसकी रक्षात्मक मानसिकता को तोड़ दी और एक लंबी तथा कठिन प्रक्रिया का मार्ग खोला। धम्म बहनों के लिए कई कठिनाइयां आईं, निराशा के पल आए और डर भरी रातें गुजरी। हालांकि लगातार साथ देने, सुनने और चिकित्सा समर्थन ने मरीसेल को एक नई संभावना का अनुभव करने में मदद की। मदर विकी को एक खास दिन याद है जब वे प्रार्थनालय में प्रार्थना कर रही थीं और उन्हें लगा कि ईश्वर खुद मरीसेल को उन्हें सौंप रहे हैं। जैसे भला समारी रास्ते में किसी घायल इंसान को नहीं छोड़ता, उस अनुभव ने उसके धैर्य एवं बिना उम्मीद खोए हर इंसान का साथ देने की उसकी प्रतिबद्धता को फिर से जगा दिया। थोड़े समय बाद मरीसेल एक विशेष केंद्र में भर्ती होने के लिए राजी हो गए। यह उससे मिले आध्यात्मिक साथ के कारण संभव हुआ। इस तरह उसका इलाज कामयाब रहा। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और स्थिरता दिखाने पर उसे बच्चों को वापस दे दिया गया। आज भी तेरा दिल फ्यूम में येसु के शिष्य धम्म बहनों का मिशन खुद को समर्पित करना और आशा का साक्ष्य देना है। संत मोनिका केंद्र एक ऐसी जगह बन गई है जहां बहुत से लोगों को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं और वे अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। जैसा कि मदर विकी कहती हैं, यहां हर युवा समाज के अकेलेपन के बावजूद साथ रहने का अनुभव करता है। जिस पल वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ बैठते हैं, वे अकेले नहीं होते। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत मोनिका संगठन के बारे सुन रहे थे, जो नशे की लत से परेशान युवाओं और परिवारों का साथ देता है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कथनी और करनी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने संत कबीर जी के इस दोहे को तो जरूर सुना होगा, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते समान भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। संत कबीर जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ बातें करता है, अपने जीवन में उसके अनुसार बर्ताव नहीं करता। केवल विचार करके या बातें करके बात नहीं बनेगी, बर्ताव करना जरूरी है। केवल बातें करने वालों को कबीर ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कुत्ते के समान सिर्फ भौंकते रहते हैं और दूसरों की सुनी सुनाई बात सिर्फ दोहराते हैं। श्रोताओ, आपने कुछ नेताओं समाज सुधारकों के भाषण सुने होंगे। वे समाज के उत्थान और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, उनके भाषणों में सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुधा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिए गए भाषणों में वे खुद फंस जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। भलाई इसी में है कि वे उतना ही बोलें जिसे वे कर सकते हों। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस के लिखे नाटिका कथनी और करनी।
1: खाने का वक्त हो गया है, चलो मैं खाना निकाल रही हूँ, खाना खा लो।
2: तुमसे कह तो दिया है कि मुझे भूख नहीं है।
1: तो ऐसे भूखे कब तक रहेंगे आप? इस उम्र में शुगर डाउन हो गई है, लेने के देने पड़ सकते हैं।
2: तो तुम क्या समझती हो, क्या अभी मुझे यानी हमें अभी लेने के देने नहीं पड़े हैं?
1: अब जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा।
2: हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी। आशा को तुमने ही तो सिर चढ़ा रखा था, तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ रही है।
1: आप भी हद करते हैं, हमारी बड़ी बेटी आशा ने गैर जात के लड़के से लव मैरिज ही तो की है ना, कोई डाका तो नहीं डाला है कहीं पर?
2: वाह, हमारी बेटी ने लड़के के लिए गैर जात में डाका ही तो डाला है, और तुम्हें लग रहा है उसने कहाँ डाका डाला है?
1: अरे वाह, तो आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं जैसे कि दुनिया में एक हमारी बेटी ने ही गैर जात के लड़के से लव मैरिज की है। समाज भरा पड़ा है ऐसे मामलों से, समझे?
2: वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे दिमाग के भेजे में अकल नाम की चीज होती ना, तो तुम ऐसा नहीं कहती, समझी तुम? अरे तुम औरों से मेरी तुलना कर रही हो, मेरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि और लोग आलतू फालतू लोग होंगे जिनकी बेटियां ऐसा करके बैठी हैं?
1: और आप?
2: अरे मेरा मेरा मुझसे क्या पूछती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ? समाज में मेरी एक इज्जत है, लोगों के बीच मुझे समाज सेवक और नेताजी के नाम से और रुतबे से जाना जाता है। अपनी जन कल्याण पार्टी में भी मेरी बहुत इज्जत है।
1: हाँ, फिर भी अभी तक पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत पाए हैं आप, है ना?
2: वो तो अपनों के ही भीतरी घात यानी सेबोटेज का शिकार हो जाता हूँ, वरना क्या सारे शहर के लोग मुझे जानते नहीं और मेरा सम्मान नहीं करते क्या?
1: पार्षद का चुनाव जीतने के लिए ना तो सारे शहर को किसी उम्मीदवार को जानने की जरूरत होती है और ना उसका सम्मान करने की। उम्मीदवार को तो बस उसके वार्ड वाले जानते हैं और सम्मान करते हैं, यही काफी है उनके लिए।
2: अब बताओ, जब घरवाली ही मेरी आलोचना करने पर तुल जाए तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: उनसे भी अच्छी ही उम्मीद की जा सकती है, बुजुर्गों ने कहा है ना, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए।
2: और अगर उसके बाद भी परिणाम नकारात्मक आए
1: तो इसे अपने भाग्य का दोष मान लेना चाहिए।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। मैं सब जानता हूँ कि अपनी आशा को गैर जात के लड़के से प्रेम व्रेम और प्रेम विवाह के लिए किसने भड़काया होगा।
1: अरे अब हर बार की तरह इस मामले में भी ये मत कह देना कि इसमें भी विदेशी ताकत का ही हाथ है, समझे?
2: बहुत खूब, और एक तुम हो, बेटी ने गैर जात में शादी कर ली और ये मोहतरमा कितनी खिलखिला रही है।
1: अरे तो क्या कर बैठी है, रोम बैठ कर, 4 दिन से आप यही कह रहे हैं, क्या नतीजा निकला उसका? समझदारी इसी में है कि वास्तविकता को स्वीकार लें शांति से, समझे?
2: मतलब तुम्हारी नजर में उसका कोई दोषी नहीं है?
1: है ना, है क्यों नहीं?
2: कौन कौन है वो, मुझे नाम बताओ उसका, मैं उसका खून पी जाऊंगा।
1: अच्छा, तो फिर आप अपना ही खून पी लोगे क्या?
2: क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: ठीक ही तो कह रही हूँ, जब से आपने दोषी कौन है ये पूछा, और मेरी नजर में आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है।
2: क्या बात करती हो उषा तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, आप समाज में अपनी छवि समाज सेवक और एक नेता की बनाते हैं और मानते भी हैं, तभी तो आप किसी क्लब, किसी पार्टी या जलसे के अपने हर भाषण में सामाजिक और देश की एकता और अखंडता के लिए अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया करते हैं, ये भूलकर कि अपनी भी कोई हो सकती है बेटी जो ऐसा कर सकती है।
2: तो वो तो सिर्फ भाषण ही होता था, उसमें सच्चाई कहाँ रहती थी।
1: तभी तो तुम्हारी बेटी ने उस सच्चाई को सच्चाई में बदल दिया।
2: ओहो, तुम मूर्खों की इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि नेताओं के भाषण उनके अपने घर वालों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। हम तो दिन भर में बहुत कुछ कहते रहते हैं और एक नई राह पर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं।
1: हाँ बस, तो फिर इतनी हायतौबा किस लिए? नेता का परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा होता है ना। तो चल पड़ी उषा भी एक नई राह पर अपने हमसफर के साथ, ठीक है?
2: ओहो, तुम भी अपनी बेटी आशा की मर्जी में रजामंद दिखाई पड़ती हो। अरे उससे किसने कहा था कि मेरे भाषण पर मेरे ही घर में अमल करने के लिए?
1: हाँ, मैं भी अपनी बेटी की खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। सचमुच अंतर जाति विवाह से समाज में, देश में एकता और अखंडता स्थापित की जा सकती है और धर्म और जात के बंधनों को तोड़ा जा सकता है।
2: तुम भी?
1: अब जब हमें उषा की शादी को आज नहीं तो कल स्वीकार नहीं होगा, तो फिर हम उसकी शादी को आज ही क्यों ना स्वीकार लें?
2: तुम स्वीकारती रहो, मैं स्वीकारने वाला नहीं। मैं सब समझता हूँ, ये सब मेरे विरोधियों की चाल है और अब तुम भी उनसे मिल गई हो। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ।
1: ठीक है, तो फिर बढ़ाते रहो अपनी शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार भाई साहब, आओ अर्चना।
3: नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं तिवारी जी?
1: हाँ, अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सुबह ब्लड टेस्ट कराया है, शाम को रिपोर्ट में पता चलेगा शुगर कितनी है। आइए आप लोग।
3: हाँ तिवारी जी, क्या हाल है? क्या यार, अच्छी भली तबीयत को किसकी नज़र लग गई।
4: नमस्कार भाई साहब।
2: नमस्कार भाभी जी, आओ सिंह साहब। बस मत पूछो यार, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
4: कौन सी बात करते हैं भाई साहब आप?
3: हाँ यार, शुभ शुभ सोचो और शुभ शुभ बोलो, अब जो हो गया सो हो गया।
1: आप लोग बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी।
4: उसकी तकलीफ मत करो उषा।
3: हाँ भाभी जी, हम तो तिवारी जी को देखने आए थे।
1: अरे भाई साहब, अपना हाल चाल इन्होंने खुद बिगाड़ा है, अब बताइए आप ही, जो हो चुका है उस पर बवाल क्या खड़ा करना? अपनी तबीयत बिगाड़ने की इनकी इच्छा थी ज्यादा।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने।
2: सिंह साहब आप भी गजब करते हैं, बेटी अपनी जड़ों से अलग हो जाए, नई जमीन तलाश करे, वह भी अनजानी जमीन, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा?
4: मगर भाई साहब, आशा ने जो नई जमीन तलाशी है वह अनजानी कहाँ है, वह लड़का तो उसका देखा भला ही है ना।
1: अरे भाई, मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ अब।
3: देखो तिवारी जी, बुरा मत मानना, क्या आप ही हर समय अंतरजातीय विवाह की दुहाई नहीं दिया करते थे? इस तरह तो आशा बेटी ने आपके सपने को सच ही तो किया है।
2: अंतरजातीय विवाह की दुहाई मैं जरूर दिया करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करे। राजनीति में तो इस तरह के हथकंडे अपनाना ही पड़ते हैं, घर में ही राजनीति थोड़ी की जा सकती है।
3: तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसे आप इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है।
4: और ऐसा करने वाले को इस तरीके की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है भाई साहब,
1: क्योंकि उसने ऐसा हो जाने की कल्पना दूसरों के साथ ही कर रखी होती है। बस वो ये सब तो नहीं जानता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों?
3: इसलिए तिवारी जी, यदि जो आप कहते हैं और वही करने और होने की आशा करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती, न उन्हें ये दिन देखना पड़ता है। इसलिए अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, वही करना चाहिए और वही होने की आशा भी करना चाहिए जो आप कहते हैं।
2: समझ गया, मैं समझ गया सिंह साहब, मैं समझ गया। अब आज से मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। उषा, आशा को फोन कर दो कि मैं उससे और दामाद से मिलना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, अभी लो।
0: कथनी और करनी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे संगठन को प्रस्तुत कर रहे हैं जो परेशान युवाओं एवं परिवारों का साथ देता है। जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चे का आगमन उनके जीवन में नई उमंग, नई आशा और अनगिनत सपने लेकर आता है। वे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके सुखद जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन माता पिता बनने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। यदि बच्चा संस्कारी, मेहनती और होनहार बनता है तो माता पिता अपने सभी कष्ट एवं संघर्ष भूल जाते हैं। उसकी प्रत्येक उपलब्धि उन्हें गर्व एवं संतोष से भर देता है। किंतु यदि बच्चा बुरी संगति, नशे, अनुशासनहीनता या अन्य गलत आदतों के जाल में फंसने लगे तो वही माता पिता गहरे दुख, चिंता और निराशा से घिर जाते हैं। वे स्वयं को असहाय महसूस करते और अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यीशु के शिष्य धर्म बहनों ने माताओं के लिए एक प्रार्थना दल शुरू किया है ताकि वे अपने बच्चों की मदद कर सकें। यह प्रार्थना दल अब एक ऐसा संगठन बन चुका है जो नशे की लत से जूझ रहे युवाओं की मदद करता है। रियो ग्रांडे का औद्योगिक शहर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है, जहां पूरे अर्जेंटीना से लोग नौकरी के अवसर एवं बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में खींचे चले आते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड, हवा एवं अकेलापन के कारण लोग अक्सर अवसाद, उदासी एवं नशेपन के शिकार होते हैं। ऐसे ही माहौल में यीशु के शिष्य धर्म बहनों ने अपना मिशन शुरू किया है। वे पहली बार 2012 में इस द्वीप पर पहुंची। केंद्र में सबसे कमजोर लोगों, खासकर अकेलापन, अवसाद और नशे की लत से परेशान लोगों की मदद की जाती है। मदर विकी याद करते हुए कहती हैं, हमें यह महसूस हुआ कि हमारे आध्यात्मिक मिशन को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा ताकि उन गांवों पर मरहम लगाया जा सके। संत मोनिका संगठन की शुरुआत उन माताओं के लिए एक स्वयं सहायता दल के रूप में हुई है जिनके बच्चे नशे की लत में फंसे हुए हैं। माताएं बहुत अधिक दर्द लेकर प्रेरित केंद्र आती थीं और अपनी हालात से उबरने के लिए आध्यात्मिक मदद मांगती थीं। शुरू में उन्हें आध्यात्मिक सहायता दी जाती थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रार्थना को ठोस रूप दिए जाने की आवश्यकता है, जो एक छोटे प्रार्थना दल के रूप में शुरू हुआ और जीवन बदलने वाली नींव बन गई। समय के साथ ऐसे स्वयंसेवी आने लगे जो न सिर्फ माताओं बल्कि उनके बच्चों की भी मदद करना चाहते थे। इससे एक ऐसे तंत्र का रास्ता बना जो पूरी तरह से मदद देता है। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इस इलाके में अकेली ऐसी सेवा है जो पूरे परिवार को मुफ्त धार्मिक एवं चिकित्सा संबंधी मदद देती है। धर्म बहनें बतलाती हैं कि यह कोई आसान सफर नहीं था। उन्हें युवाओं की मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए पढ़ाई, शोध और नए तरीके खोजने पड़े। मदर विकी कहती हैं, हमने अपने काम को बाइबल, यूकरिस्ट एवं मरियम की आध्यात्मिकता के साथ मिलाना सीखा और इससे संत मोनिका केंद्र में फर्क पड़ा। मूल विचार यह था कि संगठन का नाम भले समारिता ने रखा जाए, ताकि उन लोगों की परवाह की जा सके जो रास्ते में घायल हुए हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि परियोजना को देखते हुए धम्म बहनों ने उन बहादुर माताओं को याद किया जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी और संगठन का नाम संत मोनिका के नाम पर रखने का फैसला किया, जो दृढ़ता एवं विश्वास की मिसाल हैं और जिन्होंने अपने बेटे संत अगस्टीन के मन परिवर्तन के लिए सालों तक प्रार्थना की। यह नाम युवाओं के लिए समर्थन के साथ साथ पुनर्वास और उम्मीद में माताओं की बुनियादी भूमिका को भी दिखाता है। संत मोनिका संगठन के सफर में कई कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से एक मरीसेल की कहानी है, एक युवा महिला जिसका जीवन चुनौतियों से भरा था। मरीसेल के जन्म के बाद उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वह कई केंद्रों में पली बढ़ी। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला था जिसके कारण उसे नशीली दवाओं का सहारा लेना पड़ा। अपनी लत से उबरने के लिए उसने कई तरह के उपचार कराए, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब सरकार ने उसके बच्चों को अपनी निगरानी में ले ली। उन्हें वापस पाने का एकमात्र तरीका था सफलतापूर्वक इलाज कराना, जो उसे नामुमकिन लग रहा था। उसने संत मोनिका पहुंचने के दिन ही अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन किसी आकस्मिक चीज ने उसे रोक दी। वह मदर विकी के मैक्सिकन उच्चारण से आकर्षित हो गए। उस मामूली सी बात ने उसकी रक्षात्मक मानसिकता को तोड़ दी और एक लंबी तथा कठिन प्रक्रिया का मार्ग खोला। धम्म बहनों के लिए कई कठिनाइयां आईं, निराशा के पल आए और डर भरी रातें गुजरी। हालांकि लगातार साथ देने, सुनने और चिकित्सा समर्थन ने मरीसेल को एक नई संभावना का अनुभव करने में मदद की। मदर विकी को एक खास दिन याद है जब वे प्रार्थनालय में प्रार्थना कर रही थीं और उन्हें लगा कि ईश्वर खुद मरीसेल को उन्हें सौंप रहे हैं। जैसे भला समारी रास्ते में किसी घायल इंसान को नहीं छोड़ता, उस अनुभव ने उसके धैर्य एवं बिना उम्मीद खोए हर इंसान का साथ देने की उसकी प्रतिबद्धता को फिर से जगा दिया। थोड़े समय बाद मरीसेल एक विशेष केंद्र में भर्ती होने के लिए राजी हो गए। यह उससे मिले आध्यात्मिक साथ के कारण संभव हुआ। इस तरह उसका इलाज कामयाब रहा। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और स्थिरता दिखाने पर उसे बच्चों को वापस दे दिया गया। आज भी तेरा दिल फ्यूम में येसु के शिष्य धम्म बहनों का मिशन खुद को समर्पित करना और आशा का साक्ष्य देना है। संत मोनिका केंद्र एक ऐसी जगह बन गई है जहां बहुत से लोगों को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं और वे अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। जैसा कि मदर विकी कहती हैं, यहां हर युवा समाज के अकेलेपन के बावजूद साथ रहने का अनुभव करता है। जिस पल वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ बैठते हैं, वे अकेले नहीं होते। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत मोनिका संगठन के बारे सुन रहे थे, जो नशे की लत से परेशान युवाओं और परिवारों का साथ देता है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कथनी और करनी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने संत कबीर जी के इस दोहे को तो जरूर सुना होगा, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते समान भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। संत कबीर जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ बातें करता है, अपने जीवन में उसके अनुसार बर्ताव नहीं करता। केवल विचार करके या बातें करके बात नहीं बनेगी, बर्ताव करना जरूरी है। केवल बातें करने वालों को कबीर ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कुत्ते के समान सिर्फ भौंकते रहते हैं और दूसरों की सुनी सुनाई बात सिर्फ दोहराते हैं। श्रोताओ, आपने कुछ नेताओं समाज सुधारकों के भाषण सुने होंगे। वे समाज के उत्थान और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, उनके भाषणों में सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुधा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिए गए भाषणों में वे खुद फंस जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। भलाई इसी में है कि वे उतना ही बोलें जिसे वे कर सकते हों। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस के लिखे नाटिका कथनी और करनी।
1: खाने का वक्त हो गया है, चलो मैं खाना निकाल रही हूँ, खाना खा लो।
2: तुमसे कह तो दिया है कि मुझे भूख नहीं है।
1: तो ऐसे भूखे कब तक रहेंगे आप? इस उम्र में शुगर डाउन हो गई है, लेने के देने पड़ सकते हैं।
2: तो तुम क्या समझती हो, क्या अभी मुझे यानी हमें अभी लेने के देने नहीं पड़े हैं?
1: अब जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा।
2: हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी। आशा को तुमने ही तो सिर चढ़ा रखा था, तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ रही है।
1: आप भी हद करते हैं, हमारी बड़ी बेटी आशा ने गैर जात के लड़के से लव मैरिज ही तो की है ना, कोई डाका तो नहीं डाला है कहीं पर?
2: वाह, हमारी बेटी ने लड़के के लिए गैर जात में डाका ही तो डाला है, और तुम्हें लग रहा है उसने कहाँ डाका डाला है?
1: अरे वाह, तो आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं जैसे कि दुनिया में एक हमारी बेटी ने ही गैर जात के लड़के से लव मैरिज की है। समाज भरा पड़ा है ऐसे मामलों से, समझे?
2: बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे दिमाग के भेजे में अकल नाम की चीज होती ना, तो तुम ऐसा नहीं कहती, समझी तुम? अरे तुम औरों से मेरी तुलना कर रही हो, मेरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि और लोग आलतू फालतू लोग होंगे जिनकी बेटियां ऐसा करके बैठी हैं?
1: और आप?
2: अरे मेरा मेरा मुझसे क्या पूछती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ? समाज में मेरी एक इज्जत है, लोगों के बीच मुझे समाज सेवक और नेताजी के नाम से और रुतबे से जाना जाता है। अपनी जन कल्याण पार्टी में भी मेरी बहुत इज्जत है।
1: हाँ, फिर भी अभी तक पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत पाए हैं आप, है ना?
2: वो तो अपनों के ही भीतरी घात यानी सेबोटेज का शिकार हो जाता हूँ, वरना क्या सारे शहर के लोग मुझे जानते नहीं और मेरा सम्मान नहीं करते क्या?
1: पार्षद का चुनाव जीतने के लिए ना तो सारे शहर को किसी उम्मीदवार को जानने की जरूरत होती है और ना उसका सम्मान करने की। उम्मीदवार को तो बस उसके वार्ड वाले जानते हैं और सम्मान करते हैं, यही काफी है उनके लिए।
2: अब बताओ, जब घरवाली ही मेरी आलोचना करने पर तुल जाए तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: उनसे भी अच्छी ही उम्मीद की जा सकती है, बुजुर्गों ने कहा है ना, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए।
2: और अगर उसके बाद भी परिणाम नकारात्मक आए
1: तो इसे अपने भाग्य का दोष मान लेना चाहिए।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। मैं सब जानता हूँ कि अपनी आशा को गैर जात के लड़के से प्रेम व्रेम और प्रेम विवाह के लिए किसने भड़काया होगा।
1: अरे अब हर बार की तरह इस मामले में भी ये मत कह देना कि इसमें भी विदेशी ताकत का ही हाथ है, समझे?
2: बहुत खूब, और एक तुम हो, बेटी ने गैर जात में शादी कर ली और ये मोहतरमा कितनी खिलखिला रही है।
1: अरे तो क्या कर बैठी है, रो बैठ कर, 4 दिन से आप यही कह रहे हैं, क्या नतीजा निकला उसका? समझदारी इसी में है कि वास्तविकता को स्वीकार लें शांति से, समझे?
2: मतलब तुम्हारी नजर में उसका कोई दोषी नहीं है?
1: है ना, है क्यों नहीं?
2: कौन कौन है वो, मुझे नाम बताओ उसका, मैं उसका खून पी जाऊंगा।
1: अच्छा, तो फिर आप अपना ही खून पी लोगे क्या?
2: क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: ठीक ही तो कह रही हूँ, जब से आपने दोषी कौन है ये पूछा, और मेरी नजर में आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है।
2: क्या बात करती हो उषा तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, आप समाज में अपनी छवि समाज सेवक और एक नेता की बनाते हैं और मानते भी हैं, तभी तो आप किसी क्लब, किसी पार्टी या जलसे के अपने हर भाषण में सामाजिक और देश की एकता और अखंडता के लिए अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया करते हैं, ये भूल कर कि अपनी भी कोई हो सकती है बेटी जो ऐसा कर सकती है।
2: तो वो तो सिर्फ भाषण ही होता था, उसमें सच्चाई कहाँ रहती थी।
1: तभी तो तुम्हारी बेटी ने उस सच्चाई को सच्चाई में बदल दिया।
2: ओहो, तुम मूर्खों की इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि नेताओं के भाषण उनके अपने घर वालों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। हम तो दिन भर में बहुत कुछ कहते रहते हैं और एक नई राह पर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं।
1: हाँ बस, तो फिर इतनी हाय तौबा किस लिए? नेता का परिवार भी तो समाज का ही एक हिस्सा होता है ना। तो चल पड़ी उषा भी एक नई राह पर अपने हमसफर के साथ, ठीक है?
2: ओहो, तुम भी अपनी बेटी आशा की मर्जी में रजामंद दिखाई पड़ती हो। अरे उससे किसने कहा था कि मेरे भाषण पर मेरे ही घर में अमल करने के लिए?
1: हाँ, मैं भी अपनी बेटी की खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। सचमुच अंतर जाति विवाह से समाज में, देश में एकता और अखंडता स्थापित की जा सकती है और धर्म और जात के बंधनों को तोड़ा जा सकता है।
2: तुम भी?
1: अब जब हमें उषा की शादी को आज नहीं तो कल स्वीकार नहीं होगा, तो फिर हम उसकी शादी को आज ही क्यों ना स्वीकार लें?
2: तुम स्वीकारती रहो, मैं स्वीकारने वाला नहीं। मैं सब समझता हूँ, ये सब मेरे विरोधियों की चाल है और अब तुम भी उनसे मिल गई हो। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ।
1: ठीक है, तो फिर बढ़ाते रहो अपनी शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार भाई साहब, आओ अर्चना।
3: नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं तिवारी जी?
1: हाँ, अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सुबह ब्लड टेस्ट कराया है, शाम को रिपोर्ट में पता चलेगा शुगर कितनी है। आइए आप लोग।
3: हाँ तिवारी जी, क्या हाल है? क्या यार, अच्छी भली तबीयत को किसकी नज़र लग गई।
4: नमस्कार भाई साहब।
2: नमस्कार भाभी जी, आओ सिंह साहब। बस मत पूछो यार, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
4: कौन सी बात करते हैं भाई साहब आप?
3: हाँ यार, शुभ शुभ सोचो और शुभ शुभ बोलो, अब जो हो गया सो हो गया।
1: आप लोग बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी।
4: उसकी तकलीफ मत करो उषा।
3: हाँ भाभी जी, हम तो तिवारी जी को देखने आए थे।
1: अरे भाई साहब, अपना हाल चाल इन्होंने खुद बिगाड़ा है, अब बताइए आप ही, जो हो चुका है उस पर बवाल क्या खड़ा करना? अपनी तबीयत बिगाड़ने की इनकी इच्छा थी ज्यादा।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने।
2: सिंह साहब आप भी गजब करते हैं, बेटी अपनी जड़ों से अलग हो जाए, नई जमीन तलाश करे, वह भी अनजानी जमीन, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा?
4: मगर भाई साहब, आशा ने जो नई जमीन तलाशी है वह अनजानी कहाँ है, वह लड़का तो उसका देखा भला ही है ना।
1: अरे भाई, मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ अब।
3: देखो तिवारी जी, बुरा मत मानना, क्या आप ही हर समय अंतर जातीय विवाह की दुहाई नहीं दिया करते थे? इस तरह तो आशा बेटी ने आपके सपने को सच ही तो किया है।
2: अंतर जातीय विवाह की दुहाई मैं जरूर दिया करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करे। राजनीति में तो इस तरह के हथकंडे अपनाना ही पड़ते हैं, घर में ही राजनीति थोड़ी की जा सकती है।
3: तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसे आप इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है।
4: और ऐसा करने वाले को इस तरह की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है भाई साहब,
1: क्योंकि उसने ऐसा हो जाने की कल्पना दूसरों के साथ ही कर रखी होती है। बस वो ये सब तो नहीं जानता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों?
3: इसलिए तिवारी जी, यदि जो आप कहते हैं और वही करने और होने की आशा करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती, न उन्हें ये दिन देखना पड़ता है। इसलिए अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, वही करना चाहिए और वही होने की आशा भी करना चाहिए जो आप कहते हैं।
2: समझ गया, मैं समझ गया सिंह साहब, मैं समझ गया। अब आज से मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। उषा, आशा को फोन कर दो कि मैं उससे और दामाद से मिलना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, अभी लो।
0: कथनी और करनी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।